एक तकट एक दो तकट एक दो तीन तकट एक दो तीन चार बुझ दोनों पे पी तो किन फील किन फो किन माशी का क्लेव जय युवा एक तकट एक दो तकट एक दो तीन बुझ दोनों पे पी तो किन फील किन फो एक तकट एक दो तकट एक दो तीन तकट एक दो तीन चार तकट एक दो तीन चार पांच तकट धा एक दो तीन चार पांच तकट धा एक दो तीन चार पांच तकट ऊका को ऊका को ऊका ऊका ऊका को ने तद दद के तद मिट के तम तकट तकट तद मिट के तम तद तद के तद मिट के ता ओ तुंगा तद तद तुंगा तद तद दग दग के तक तुम तद तद दग दग के तक दग दग तुंगा ता तक तक के तुम तद के तक तद के तक दिन तक तद के तुम तक तद के तुम तक तद के तुम तक तद के तुम तक तद के तुम तक तद के तुम तक तद के तुम तक तद के तुम तक तद के तुम तक तद के तुम तक तद के तुम तक तद के तुम तक तद के तुम तक तद के तुम तक तद के तुम तक तद के तुम तक तद के तुम तक तद के तुम तक तद के तुम तक तद के तुम तक तद के तुम तक तद के तुम तक तद के तुम तक तद के तुम तक तद के तुम तक तद के तुम तक तद के तुम तक तद के तुम तक तद के तुम तक तद के तुम तक तद के तुम तक तद के तुम तक तद के तुम तक तद के तुम तक तद के तुम तक तद के तुम तक तद के तुम तक तद के तुम तक तद के तुम तक तद के तुम तक तद के तुम तक तद के तुम तक तद के तुम तक तद के तुम तक तद के तुम तक तद के तुम तक तद के तुम तक